दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

प्यारे सुनने वालों, आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। अभी हम बदरुद्दीन हिलाली की जीवनी के बारे में आपको जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ रहे।

कवि वसंत की मनमोहक दशियों का आनंद लेता है। वसंत फूलों का मौसम है और प्रेम एक सुगंधित और आनंदित फूल की तरह प्रकट होता है। हिलाली के प्रेम कविताओं में विशुद्ध मानवीय प्रेम का ताप अत्यंत सुंदर और सजीव ढंग से कागज पर अब ही व्यक्त हुआ है। बद्रुद्दीन हिलाली के भावु गजलों में प्रेम को एक नया अर्थ मिला है और इस अर्थ में कवि ने उच्च मानवीय और निजी विचारों को भी अभिव्यक्त किया है। हालांकि प्रेम के देश के इस सम्राट की संपूर्ण रचना प्रेम की पिरास से आच्छादित है। हिलाली के अधिकांश कविताएं जिनकी रचना उन्होंने स्वयं 1531 में की थी गजलें हैं। उनकी कविता में लगभग 307 गजलें हैं। 32 रुबाइयां, 8 क़िता और अन्य लघु गीतात्मक शैलियां शामिल है जिनकी कविताओं की संख्या 2700 तक पहुंचती है। कवि के क़िताओं और रुबाइयों की विषय विधि है और वे लेखक के दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक विचारों को प्रतिबिंबित कर

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

प्यारे सुनने वालों, आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। अभी हम बदरुद्दीन हिलाली के जीवनी के बारे में आपको जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे साथ रहे।